चेतक पर जो शायद कहीं कहीं महाराणा प्रताप के जीवन का वो रक्षक रहा। वो कुंतीश कहते हैं, राणा की पुतली फिरी नहीं चेतक मर जाता था, ऐसा स्वामी रखता चेतक। स्वतंत्रता के प्रतीक थे। आज उनकी जयंती पर हम सब महानायक को नमन करते हैं और सुनते हैं उनके जीवन रक्षक विक्रम ने भी, जो कि कहीं ना कहीं उनके जीवन का बहुत बड़ी अहम भूमिका थी उस चेतक की।

रविंद्रनाथ टैगोर ने ड्राइंग और पेंटिंग के हाथ में हाथ मारा और सबसे ही प्रदर्शनियाँ आयोजित की। टैगोर ने भारत को दुनिया के साहित्यिक मानचित्र पर रखा। साल 1913 में साहित्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि इस श्रेणी में सम्मान पाने वाले पहले भारतीय थे। यह पुरस्कार उन्हें गीतांजलि नामक काव्य संग्रह के लिए

ことの次に次に何すぎてみせて。रायों की विद्यालय की स्थापना की थी जो भारत और पश्चिमी परंपराओं को मिलाने की कोशिश थी। 1930 में यह विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया।

2000 से अधिक गीतों की रचना की जिनको रविंद्र संगीत कहा जाता है। इनकी अपनी विशिष्ट गीतात्मक और प्रवाहमय शैली है। उन्हें उनके गीत एकला चलो के लिए भी याद किया जाता है। सुनवा रहे हैं वही गीत।

फिल्म से ये गीत हमने लिया था। आवाज थी अमिताभ बच्चन की और इसे संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने।

सदा प्रसिद्ध पार्श्व गायक और फिल्म अभिनेता की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने गजल गायक के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। शुरुआत में उन्होंने तपन कुमार के नाम से गाने गाए और वे हैं बेहद सौम्य और विनम्र स्वभाव वाले तलत महमूद, जिनके लिए संगीत एक जुनून था, जबकि उनकी अदाकारी ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार के रूप में पहचान दिलाई। 16 साल की उम्र में ही पहली बार आकाशवाणी के लिए उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, जिससे लखनऊ में उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली और वे सफल होते गए।

नेता बनने की चाहत लिए 1944 में कोलकाता चले गए। शुरुआत में वे तपन कुमार से के नाम से उन्होंने गाने गाए, जिनमें कई बंगाली गाने भी थे। कलकत्ता में बनी फिल्म स्वयं सिद्धा में पहली बार पार्श्व गायन किया। अपनी इस सफलता के बाद वे मुंबई में संगीतकार अनिल विश्वास से मिले। वहां राखी, अनमोल रतन और आरजी से उनके करियर को चमक मिली। उन्होंने हिंदी की 13 और 3 बांग्ला फिल्मों में अभिनय भी किया। उन्होंने 17 भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए। श्रोताओं, अगर गजल गायकी की बात करें जिसके लिए वे जाने जाते हैं, तो बता दें कि इसे महमूद ने सम्मानीय ऊंचाइयां प्रदान की। हमेशा उत्कृष्ट शब्दावली की बदले ही उन्होंने चयनित की। वे पहले भारतीय गायक थे। 1956 में जिन्होंने 1956 में विदेश में कार्यक्रम दिया था। उन्होंने अपने लंबे करियर में हिंदी समेत विभिन्न भाषाओं में 800 गीत गाए। अपनी मखमली आवाज के जरिए लोगों को अच्छे तक अपना दीवाना बनाने वाले इस कलाकार को 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1995 से 96 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया और 9 मई 1998 को वे इस दुनिया को अलविदा कहते हैं।

शंख गीत आपने सुना लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। गीत था, गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था सलिल चौधरी का। श्रोताओं, इसके साथ ही

0: प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
1: मेरे मन की बातें सुनना, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कोई सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: कभी कम ज्यादा बोला अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएल।

फिर से लेकर आ गए हैं। नमस्कार जमशेदपुर में और बाकी के बातें, क्योंकि बातें अभी बाकी है और जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें भी बता दें कि आज

आज टाइगर ऑफ स्नोज की पुण्यतिथि है, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह पाई थी और पहले व्यक्ति थे जिन्हें तेंजिंग नोर्गे या शेरपा तेंजिंग कहा जाता है। जन्म तो नेपाल में हुआ था उनका, पर 1933 में उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। 1953 में हिलेरी एवरेस्ट के सागर माथा पर पहुंचने में सफल रहे और उनके साथ ही तेंजिंग ने भी सफलता प्राप्त की। वापसी पर उनका भव्य स्वागत किया गया। श्रोताओं, इससे पहले भी कई लोगों ने एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया था, पर वे सफल नहीं हो पाए थे और इसीलिए जब वे वापस आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया और तेंजिंग को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जॉर्ज मेडल देकर सम्मानित किया। 1954 में वे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक बने। 1978 में उन्होंने तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर्स नाम की कंपनी बनाई, जो हिमालय में ट्रेकिंग कराती है। उनके प्रयास के लिए उन्हें

दिलचस्प बात आपको बता रही हूँ। बात ये है कि जब एवरेस्ट की चोटी पर जितने भी फोटो लिए गए उनमें केवल पेंसिल ही दिखाई दे रहे थे, हिलेरी थे नहीं, क्योंकि उन्हें फोटो पेंसिल दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्हें फोटो खींचना ही नहीं आता था, और हिलेरी कहीं नहीं दिखाई दिए क्योंकि हिलेरी ही

की आवाजों में अभी आपने सुना संजू सिंह का ये गीत। गीत लिखा था शेखर अस्तित्वम ने और संगीत दिया था विक्रम मॉन्ट्रोस ने।

1974 को आज के दिन मुंबई की सड़कों पर पहली बार घोड़े से चलने वाली गाड़ी शुरू की गई थी, जिसने भारत में सार्वजनिक परिवहन के नए युग की शुरुआत की। यह केवल एक गाड़ी नहीं बल्कि मुंबई के शहरी विकास में क्रांतिकारी कदम था, जिसे एक या दो घोड़े खींचते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर 6 से 8 घोड़े भी लगाए जाते थे, जो यात्रियों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते थे। शुरुआती दिनों में किराया 1 आना था और कोई टिकट भी नहीं दिया जाता था, जो बाद में

दूसरी शताब्दी के अंत में जब ऑटोमोबाइल का नामो निशान तक नहीं था, तब ये गाड़ी घोड़ा गाड़ियाँ मुंबई के लोगों के लिए परिवहन का प्राथमिक साधन बनी और 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही। श्रोताओं, आज 9 मई 2026 है और 9 मई 1874 की यह शुरुआत हमारे लिए याद बन गई है, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जीवन की रफ्तार यातायात की धीमी रफ्तार से प्रभावित थी, लेकिन जीवन की गुणवत्ता और पुरानी यादों को हम फिर से ताजा करेंगे जो लोगों के दिलों में बसती है। तो चलिए गीत सुनकर यादों को ताजा करें और इमेजिन करें उस

गीत आपने सुना किशोर कुमार और महमूद की आवाज में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। श्रोताओं, 1874 को लोग यह मुंबई में यह शुरू हुई थी, पर आज़ादी के बाद भी काफ़ी सालों बाद भी यह घोड़ा गाड़ी जैसी टमटम हमारे शहर जमशेदपुर में भी चलती थी, क्योंकि बचपन में एक बार मैंने भी इसकी सवारी शौक से की है, मुझे याद है। आज जब आपसे बातें कर रही हूँ तो मुझे भी याद आया, तो मैंने इसे आपसे शेयर किया। और वो उस वक्त शायद इकलौती टमटम रही होगी, क्योंकि बसें, कारें और ऑटो का जमाना भी

do the researchers are moving on.

हम जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र हैं और उनके 1.8 मेगाहर्ट्ज पर 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में राष्ट्र प्रसारण के तहत समाचार का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस सरल समय के साथ।

0: শুভেন্দুকে পদ গোপনীয়তাকে শপথ দিলাই।
1: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
0: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बसपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एस एन राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत है। उन्हें 4 दशक की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने

विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 नई दिल्ली में सम्पन्न हो गया। दो दिन के आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद के इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माही, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। FM 101.8 MHz पर जुड़ते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के अंतर्गत और सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर आप ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700104242।
0: ओ 8700104242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700104242 पर।
2: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होंगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
3: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए डिस्ट्रिक्ट ऐप ज़ोमैटो, आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।
4: मैं जमशेदपुर का गोली पर अभिनव गोम और मैं सभी जमशेदपुर फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे द फर्नर्स में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। और टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप ज़ोमैटो।

संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गायक हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार है शैलेंद्र और संगीतकार है सलीम।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: मैं जमशेदपुर का गोल्डी पर अल्बिनो गोम्स और मैं सभी जमशेदपुर फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे द फर्नर्स में बेंगलुरु FC के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। फॉर टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।
6: मैं सार्थक गोलवी हूं और मैं सभी जमशेदपुर एफसी फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे फर्नर्स में बेंगलुरु FC के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। फॉर टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।

0: आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार है शैलेंद्र और संगीतकार है शंकर जयकिशन।
1: मैं जमशेदपुर का गोल्डी पर अर्जुन बोल और मैं सभी जमशेदपुर फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे द फर्नर्स में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। और टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।
2: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
3: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।

0: 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: श्यामला वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे।

0: साथ दुल्ही हूँ और मैं सभी जमशेदपुर एफसी फैंस को इनवाइट करता हूँ कि 9 मई को शाम 7:30 बजे फर्नेस में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। और टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय जोमैटो।
1: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होंगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
2: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय जोमैटो या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।

के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे सनत महमूद और शमशाद बेगम।

हम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, तो एक उलड़कपन का दौर था हमारा।

0: करना शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे।
2: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होंगी जमशेदपुर एफसी बराम बेंगलुरु एफसी।
3: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए टिकट ऐप बाय ज़ोमैटो या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कुछ हम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, तो एक उलटपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को हमार दे और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस पर इंडिया में जान बाकी, और जिस दिन म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज

0: दादा से सुनिए आवाज तलक महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव वर्मा।
1: समर आ गया है और जमशेदपुर में शुरू हो रहा है कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेकर आया है ऐसा समर कैंप जहां बच्चे ही नहीं मम्मी पापा भी रहेंगे फिट।
2: अब इंतजार नहीं, पूरा एक्टिव टाइम, सेल्फ डिफेंस क्लासेस एंड वेट लॉस प्रोग्राम और पहली बार यंगस्टर्स का नया क्रेज पिकल बॉल भी शामिल। जुम्बा योगा सभी के लिए, रोल बॉल 4 से 19 साल, क्रिकेट 4 से 19 साल, बाकी स्पोर्ट्स 6 से 19 साल के लिए।
1: तो देर किस बात की, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 मई 2026। अभी विजिट करें जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स .in/PSL-camp एरिया जमशेदपुर।
3: मैदान में दिखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होंगी

0: ज्यादा से सुनिए आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव वर्मा।
1: समर आ गया है और जमशेदपुर में शुरू हो रहा है कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेकर आया है ऐसा समर कैंप जहां बच्चे ही नहीं मम्मी पापा भी रहेंगे फिट।
2: अब इंतजार नहीं, पूरा एक्टिव टाइम, सेल्फ डिफेंस क्लासेस एंड वेट लॉस प्रोग्राम और पहली बार यंगस्टर्स का नया क्रेज पिकल बॉल भी शामिल। जुम्बा योगा सभी के लिए, रोल बॉल 4 से 19 साल, क्रिकेट 4 से 19 साल, बाकी स्पोर्ट्स 6 से 19 साल के लिए।
1: तो देर किस बात की, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 मई 2026। अभी विजिट करें जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स .in/TSL-CAMP एरिया जमशेदपुर।
3: मैदान में दिखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
4: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।

मैं जमशेदपुर का गोल्डी पर अल्बिनो गोल्ड और मैं सभी जमशेदपुर फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे द फर्नर्स में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट एप बाय ज़ोमैटो।

0: जमशेदपुर एफसी फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9th मई को शाम 7:30 बजे फर्नेस में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। और टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।
1: कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
2: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का फर्निंग दौर था, स्टीम का जवाब भी, जिसने मुझे इसके चरण से इन चीजों को हमार दे और साकार करने का अवसर दिया।
2: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा गाने की उड़ान माफी परिंदे में जाना थी और जिस दिन म्यूजिक के साथ शुरू हो गई, किसी शायर के साथ नहीं हुआ।

engagement

0: आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत। निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत, सनत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिली दादा।
1: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
2: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए इस पे ऐप बाय ज़ोमैटो या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।

0: जयपुर में शुरू हो रहा है कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेकर आया है ऐसा समर कैंप जहां बच्चे ही नहीं मम्मी पापा भी रहेंगे फिट।
1: आप इंतजार नहीं, पूरा एक्टिव टाइम, सेल्फ डिफेंस क्लासेस एंड वेट लॉस प्रोग्राम और पहली बार यंगस्टर्स का नया क्रेज पिकल बॉल भी शामिल। जुम्बा, योगा सभी के लिए। रोल बॉल 4 से 19 साल, क्रिकेट 4 से 19 साल, बाकी स्पोर्ट्स 6 से 19 साल के लिए।
0: तो देर किस बात की, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 मई 2026। अभी विजिट करें jrdsportscomplex.in/tsl-camp-area जमशेदपुर।
2: मैं जमशेदपुर का गोल्ड पर अल्बिनो बोम्स और मैं सभी जमशेदपुर फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे द फर्नर्स में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। फॉर टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।
3: रोजाना छाया गीत के आयोजित थे वीको वज्रदंती।

0: के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसीलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त वो श्रोता जो फेसबुक

जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है, पर किसी की आत्मिक पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी सादी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं, वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी, तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टोली अपनी प्लेलिस्ट की कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी? हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है, वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब? मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को जो गीत आज हमने चुने हैं किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में हमने देख लिया है।

0: साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेकेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी। भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने के कवायद तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल R.N. रवि ने शुभेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्र पाल, अशोक कीर्तनिया और निशित प्रमाणिक के नाम शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने विसंगतियों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदीव्य कुमार को शामिल किया गया है। झारखंड की राजनीति में गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान के बीच विधायक सरयू राय के बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया है कि वे कांग्रेस माइनस सरकार बनाने पर विचार करें। उन्होंने तर्क दिया कि इससे सरकार की कार्य प्रणाली और छवि में सुधार हो सकता है।
1: मैंने उनसे जिक्र किया कि सुना है कि आप भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। उन्होंने इनकार किया और कहा कि मीडिया में कई तरह से बातें आ जाती हैं। मैंने कहा कि एक विकल्प हमने भी सुझाया है, विचार करें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो जैसा स्थिति जैसी है वही बढ़िया से चले, हम सभी की कोशिश है।
0: हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य सरकार में किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में गठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
2: सलाह मान

0: करते हुए काम करना है। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा है और जिस बात को लेकर सरकार बनी है वो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को केंद्रित बिंदु में रखकर सरकार बनी।
1: कानून व्यवस्था के सवाल पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी दल झामुमो ने स्पष्ट किया है कि हेमंत सरकार अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देती है और कानून अपना काम पूरी सख्ती से कर रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान की सक्रियता पर कहा कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
2: झारखंड में जीरो टॉलरेंस की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, ये बहुत दिन तक ऐसे अपराधी बच नहीं पाएंगे और जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे ये अपराधियों को संरक्षण देना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में होगा। ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों में होगा। अब इतना दिन नहीं खराब आ गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया गठबंधन का कि अपराधियों को संरक्षण दे।
1: झारखंड कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को शांत करने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व सांसद धीरज साहू और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कल रांची में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पार्टी के कुछ फैसलों से वे आहत जरूर हैं, लेकिन संगठन के हित में 18 मई तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू के समक्ष विस्तार से रखेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिनों तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय शैक्षणिक समागम में देश के लगभग 200 प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और सैन्य क्षेत्र के डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों को गर्मी के दौरान निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को न केवल दंडित किया जाएगा बल्कि उनका अनुबंध भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बैठक में जल मीनारों की मरम्मत, होल्डिंग टैक्स वसूली और बस स्टैंडों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने शहरों में कचरा उठाव और साफ सफाई की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए सामुदायिक भवनों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। लौह नगरी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक छात्र गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 3 गाड़ियां बरामद की हैं। एएसपी ऋषभ त्रिवेदी ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह गिरोह सुनसान जगहों पर गाड़ियों के पार्ट्स अलग कर उन्हें बेचने का धंधा करता था।
3: प्रमुख अभियुक्त 4 पकड़े गए, हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। चोरी करके ये लोग गाड़ी का पुर्जा तोड़ देते हैं कि गाड़ी का वो कभी हैंडल निकालेंगे कभी पहिया निकालेंगे। वही हम लोगों ने जब उनसे कड़ी पूछताछ की तो यह पता चला कि वो गाड़ी के उनके पुर्जे निकालते थे, उसको कई सारे पुर्जों में बेचा जाता है।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,500 रुपए है

किलो है। कोडरमा के सतगावा में कल देर रात वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। लोहे की खिड़की के जरिए बिजली के कमरे के अंदर गिर जाने से यह हादसा हुआ। इधर मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग और बोकारो समेत 5 जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी। भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने की कवायद तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

शुभ समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है, एफएम के 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। पुनः जुड़ते हैं विविध भारती के राष्ट्र प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जहां अब सुनेंगे जारी कार्यक्रम विविध।

0: मैं जमशेदपुर गोल्ड पर अल्बिनो गोल्ड और मैं सभी जमशेदपुर फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे द फर्नर्स में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। और टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।
1: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होंगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
2: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।
3: किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है। हम आपको बता देते हैं, इस गीत के गीतकार ने कवि कदी और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है? चोटी।

0: लिखें 9 मई को जब आमने सामने होंगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
1: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए इसका ऐप बाय ज़ोमैटो आईएचटी जब बॉक्स ऑफिस पर।
2: मैं सार्थक गोलवी हूं और मैं सभी जमशेदपुर एफसी फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे फर्नेस में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए और टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।
3: मगर बहुत रोचक संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है, मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप इस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला ये कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, इसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे।

चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रहे बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और सैफ की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होगी जमशेदपुर FC बनाम बेंगलुरु FC।
1: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।
2: मैं सार्थक गोलवी हूं और मैं सभी जमशेदपुर FC फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे फर्नेस में बेंगलुरु FC के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। फॉर टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: मैं सार्थक गोलवी हूं और मैं सभी जमशेदपुर FC फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे फर्नेस में बेंगलुरु FC के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। फॉर टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।
6: रोजाना भूले बिस्तर गीत के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती भारत का दम एक्सपर्ट।
0: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होगी जमशेदपुर FC बनाम बेंगलुरु FC।
1: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।
6: रोजाना छाया गीत के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं और हम भी तैयार हैं आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था। चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था। वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भरपा कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया। एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सुने मन को छू लिया, जैसे बरसों से सूखी धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था। उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए

टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया। फिर एक दिन किसी आत्मिक पुकार ने उसके सुने मन को छू लिया, जैसे बरसों से सूखी धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था। उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक छोटा लिखते हैं कि मैं इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसा है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन।

श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और शुभ लक्ष्मी दो लड़कियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है, ये आवाज दी थी अमीर भाई कर्नाटक की और खान मस्तान ने जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप है, कवि प्रदीप है, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीर भाई कर्नाटक की दे रही है। व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भाई अब कौन से गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी? और मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया,

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का व्यक्ति हमसे ज्यादा होशियार, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठ, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है, तुम कैसे।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: सभी ओर से हताश हो जाता है, जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मा की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई उछकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसैला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं, ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना, और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ। मन्ना डे और सैटिन की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया

मेंशन करती आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दुमही का सुनवाया था उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं, क्यों नहीं है चिड़िया शब्द? हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दो बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे, उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल ये गीत है ही ऐसा जहाँ इंसान पुराने जो लोग हैं उनसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहाँ मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने तक किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और

सोपान पर है जहाँ पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी। ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं?

आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर ये गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं, लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुनें, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों? लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय नई दोस्ती, लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

सिवा जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं। जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं। जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं। जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सच्चे दोस्त इस सफर के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत

bir tane değil.

0: होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
2: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: শপথ গ্রহণ কি প্রক্রিয়া কে অনুসার সবসে পহলে শুভেন্দু অধিকারী নে মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে শপথ লি। উসকে বাদ এক এক কর মন্ত্রী কে রূপ মে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক কীর্তনিয়া, খুদিরাম টুডু আর নিশীথ প্রামাণিক নে শপথ লি। আকাশবাণী সমাচার কলকাতা সে কাশ্মীর নাহার।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर

sul drone batterio.

0: पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुड़े बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में सम्पन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला

0: टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होंगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
2: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।
3: मैं सार्थक गोलवी हूं और मैं सभी जमशेदपुर एफसी फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे फर्नेस में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। फॉर टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय ज़ोमैटो।

0: शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को हमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको

0: भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: मैं सार्ता दुलवी हूं और मैं सभी जमशेदपुर एफसी फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे फर्नेस में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। फॉर टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय Zomato।
2: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होंगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
1: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय Zomato या आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।

0: में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होगी जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी।
1: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए जोमैटो या एचडीएफसी बॉक्स ऑफिस पर।
2: मैं शारदा दुलवी हूं और मैं सभी जमशेदपुर फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे फर्नेस में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। फॉर टिकट्स डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय जोमैटो।
3: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बंगला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा।
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए वोट टेकिंग किया।
3: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कल रांची के रातू में मत्स्य परियोजना का अवलोकन किया। इस दौरान श्रीमती तिर्की ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं, सरकार इसके लिए जरूरी सिस्टम तैयार करने की योजना बना रही है ताकि स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ सके। बिजली और पानी के मुद्दे पर भाजपा चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संताल परगना के विभिन्न जिलों में जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। कल भी राज्य के कई हिस्सों में पार्टी ने प्रदर्शन किया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज झारखंड समेत देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। रांची सिविल कोर्ट परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत विशेष बेंचों का गठन कर कई मामलों का निष्पादन हुआ है। लोक अदालत के दौरान कई लोगों को न्याय मिला है। इस दौरान लाभार्थियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार और चोरी के उपयोग में काम आने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं।
5: इंटरसेप्ट किया गया, इसमें से 4 अपराध कर्मी जो है भागने का प्रयास किए करके, जिसमें से एक को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उसके पास से हथियार मिला है, गाड़ी में जो है भोजन के काफी सामान मिले हैं और उसकी निशानदेही पे कैश करीब 51,000 बरामद हो चुका है जो घटना में ले जाया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, बाकी जो अभियुक्त है उनकी भी सबकी पहचान हो गई है। पुलिस लगातार छापामारी कर रही है, वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
3: पलामू में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। चैनपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उधर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर लूटे गए सामान और अन्य चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर आज स्कूलों और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर शांति निकेतन के गौर प्रांगण में 42 गीतों का आयोजन किया गया। उनकी जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने 25वें वर्षगांठ के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरुदेव टैगोर ने असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक थे और विचारक एवं कवि थे। जमशेदपुर में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती श्रद्धा उत्साह के साथ मनाई गई। मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग, जनप्रतिनिधि

संस्थानों के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में शहर के शिक्षाविदों एवं इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के जीवन, शौर्य, त्याग और राष्ट्र रक्षा के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार दो दिन बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखे, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियाँ आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को जब आमने सामने होगी जमशेदपुर FC बनाम बेंगलुरु FC।
4: टिकट खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिए इस प्रकार बस जोमैटो आइए स्टेडियम बॉक्स ऑफिस पर।
5: मैं सार्थक गोलवी हूं और मैं सभी जमशेदपुर FC फैंस को इनवाइट करता हूं कि 9 मई को शाम 7:30 बजे फर्नेस में बेंगलुरु FC के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आइए। और टिकट डाउनलोड डिस्ट्रिक्ट ऐप बाय जोमैटो।
3: मैदान में देखेगा जोश और जीत का असली खेल 9 मई को आपके सामने होगी जमशेदपुर FC हम बेंगलुरु FC।
1: पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अढ़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो है भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए आप सभी सुनना चाहते हैं

लखतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, दीवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने आप सभी सुनना चाहते हैं। किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहेगी। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है

श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है। फिल्म का नाम है धर्मवीर। गीतकार आनंद बख्शी है।

ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत समीर के बोल अलका याग्निक कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें फिल्म का नाम है दिलवाले इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह नीलेश सिंह शैलेश सिंह शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर विरक जयतेज विरक और मीका

का कार्यक्रम मन चाहेगी। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

सकती है कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का

0: मैं नया पोस्टमैन करने सामने हूँ। लीजिए ये आपकी चिट्ठी है।
1: लाओ। अरे हाँ याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
0: जी हाँ वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
1: अरे भाई तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
0: जी हाँ सब ऐसा ही कहते हैं, मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा अब आज्ञा दीजिए।
1: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए, कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया अपना काम देखो।
2: पोस्टमैन मेरी कोई चिट्ठी है?
0: नंबर पता है श्रीमान,
2: नंबर 11 पश्चिमी गली।
0: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
0: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
2: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
0: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मुनियादे लिख कर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, सभी मणि

0: पास जाने चाहिए थे।
1: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं, शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
0: आप ठीक कहते हैं, आपको यहाँ बरसों से पोस्टमास्टर हैं।
1: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं, बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं, इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट।
0: नहीं पोस्टमास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग बड़े ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।

0: देखते ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप पहलो सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और एक पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। तो बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या? तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
1: मनी ऑर्डर?
0: हाँ एक है।
1: सैनिक ने रुपया भेजा है? शाबाश जवान।
0: कौन है वो सैनिक?
1: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
0: मेरा डुप्लीकेट?
1: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली

0: धरती पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी, तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियाँ, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है? उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जरा देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहाँ वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहाँ आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया। सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3000 या 4000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्ट मास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसकी डाक उसे फौरन मिलनी चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो, ठीक तरह से गिन लो। डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ

0: आजकल मेरा हाथ जरा तंग है, इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
1: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना,
0: लगता है मारिया आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। काले लगाओ।
1: अरे जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई शिंगारम? कहो कुछ काम बना?
0: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
1: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
0: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
1: शिंगारम, हाँ? शिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
0: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
1: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
0: क्यों?
1: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
0: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
1: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ। सुनी सुनाई कह रहा हूँ, और तुम जरा बात करके देखो, अब पता चल जाएगा।
0: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तस्वीर तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
0: अजी बैठिए भी।
2: अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, दाग बहुत है हाथ में।
0: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
0: तू लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
0: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ।

0: कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
1: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं? ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
0: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
1: शिवकामी अम्माल के नाम, उन्हीं को देना है मुझे। मैं चलता हूँ।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
0: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते। जिस शिवकामी के नाम ये मनियाड़ है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनियाड़ फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
1: वरना क्या होगा?
2: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे? ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे। अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
0: लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
1: सिंगारम, ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
2: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
0: जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ।

0: मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी ने ही आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3,000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। हाँ, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्ता हो तो तुमने और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा, वो फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा न कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगाराम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा,

0: बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
1: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा न बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
0: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
1: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाकखाने के कानून के खिलाफ है।
0: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
0: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो।

0: आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है।
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्मा के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ,

0: कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने
0: काम से। अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो दीदी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस काम में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, कब चलता फिरता नजर आ?
0: इस तरह क्यों दुखाती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जीजी, इस उम्र पर तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहो।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: सिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं दीदी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे दानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता।

0: खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता और जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा।

0: नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। आप क्या करो, सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों के झरनों की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीलम, क्यों तुम नीली की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़ी ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो और
0: मुझे घर जाना है। नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा?
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और तरह धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
2: अच्छा ये बात है।
3: यहाँ कोई नहीं बताएगा तुझे। तीन बार बड़े एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाकिये, गाँव में नया नया आया है और तुम मुझ पर दुआ। अच्छा देख लो ना तुझे।
3: अरे अभी देख लेना किस तरह से। अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाओ तो जरो कर दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
2: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल की छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं इस मुसाफ को धन्यवाद दूँ, आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शृंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है।

0: आगे पीछे है नहीं, सो
1: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
1: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा धर्म का तो हो, मेरी नानी ने श्रृंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
1: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है।
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं और वो पद्मा श्रृंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
1: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करूंगी।
1: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुँच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, अच्छा जी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक मारने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी भी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्बाल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी,
2: कौन? कंदस्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
3: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
2: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
3: ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
3: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
2: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियाँ दे गया था, बाकी दवाई
3: मैं लाता हूँ। दवाई
2: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए, मरने से पहले मैं तुम्हें।
3: ये आप क्या कह रही है माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
2: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
3: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
2: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
3: लो माँ।
4: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे PS कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने।
5: ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है, FM 101.8 MHz पर। 4 बजने वाले हैं, अभी आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कीजिए बस जरा सा

0: पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा। बिजली और पानी के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज संताल परगना के विभिन्न जिलों में जनसरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड उच्च न्यायालय में आज महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति में दस्तावेज सत्यापन के बाद भी अभियुक्ति नहीं दिए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि यदि नियुक्ति के लिए 5 अभ्यर्थी हैं तो उन्हें नियुक्ति के लिए तुरंत अनुशंसित किया जाना चाहिए। पलामू पुलिस ने अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 3 मई को हुई गोलीबारी में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पिपराटांड थाना में हुई हत्या मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया, जबकि लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी मामले में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। सिमडेगा जिले के बोलवा थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पिछले दिनों करीब 15 लाख रुपए मूल्य के पाइप को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने पाइप चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी अपने सभा समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के राज्य केंद्र से। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। असम के 100.8 मेगाहर्ट्ज पर जुड़ते हैं राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। अगला कार्यक्रम सुनेंगे विचारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज पर थोड़ी देर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: 14 अप्रैल जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे काल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन, तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात
0: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है
0: मुहूर्त। मैं
1: तो क्या बात,
0: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे से दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी।
0: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था, अन्ना जी का वो हाउस ऑफ बैम्बू बन्नादा के साथ गाना था।
1: हाँ,
0: तो मेरे लिए उतना अच्छा मौका था वो सुवर्ण संधि होते कि बन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कोना से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कोना।

0: तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगत होना चाहिए, आजी ने गाना गाया है। तो वो इतने खुश हो गए, मुझे बोले तू मेरे लिए गाओगी? तो मैं हाँ जरूर गाऊंगी। बहुत मजा आया बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का, तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
0: तो इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहाँ में खो गए, अजीब दास्तान, ये इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है। तो फिर पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना कर।
1: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
0: ऐसे मैं मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश करती थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए, उसकी झलक उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा का गाने एक एक, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम का।
1: तो आप एक

0: करके उसी स्कूल में पढ़ी।
1: ये किस शहर की बात हो रही
0: है? मुंबई।
1: मुंबई मुंबई
0: गिरगांव में।
1: गिरगांव
0: हमारा रहना भी वहाँ था।
1: मुंबई
0: सब चाल थे सब ऐसे, और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए तो पापड़ बेलना सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति दिवाली सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
1: अच्छा।
0: लेकिन घर में जो सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सतत खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को, जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था। तो बाहर जाने की जरूरत महसूस होती थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा।
0: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
1: अच्छा।
0: तो इसीलिए जाना हुआ।
1: हाँ।
0: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
1: अच्छा।
0: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का। तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक सब्जेक्ट था। तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके संगीत छाया। तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई। मेरी आवाज जरा भारी थी, जारी थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी और हाइट भी अच्छी थी। तो मैं कोदंड और दूसरी शारदा फिल्म में कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
1: ये महिला विश्वविद्यालय,
0: महिला विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
1: अच्छा।
0: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं मुंबई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के, बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे। बहुत मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ।

0: एक स्वर्णिम युग था और तब स्त्रियां जो है महिलाएं जो है भूमिका नहीं करती थी, तो पुरुष के लिए नारायण राजहंस के अनुसार गंधर्व जाने जाते हैं और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं की।
1: यह उल्टे मामला,
0: अरे मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका नाटक में दिखाई। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बशीर भी मिला,

0: फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था। क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 के फिल्म थी तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके शॉर्ट फिल्म थी, पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म विजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बन रहा है, शायद फिल्म विजन भी चालू है कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब भी मैंने 16 साल की तब शादी हो गई। 42 साल का मेरा जन्म है और 58 को शादी हो गई 16 साल की। तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहले बेटी हो गई, तो 1962 में उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएमडीटी में, तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई। और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है पूजा होती है, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर, और फिर एमए किया और 68 में पहला मौका आया दलित साहब के साथ। दलित साहब के साथ एक नंदी गूगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली पर मिला जब गाने गाइए कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी नुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, मैं चलेगी
1: दौड़े
0: जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा और दो बेटियाँ, एक 4 साल की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे

0: आप अलग अलग देशों में घूमे जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का? आपने वेस्ट इंडीज के बारे में बताया
1: ज्यादा तो जी,
0: वेस्ट इंडीज आप कलर साहब के साथ
1: गए फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी
1: उन प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा, तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीका का उनके तो क्या किस्से, मैं आपको सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्ले बैक गाया हुआ था फिल्म में, तो उन्होंने पहले ही शब्द डाले कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा। मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट का, तो मैं अपने गाने गाते मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती
0: थी,
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था दम मारो दम, तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरियबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम, तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी, तो स्टेज पे आए थे दम मारो दम ऐसा कर
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको, इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सरिस्तर गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा इधर उधर ऐसा सुनता, बहुत अस्वस्थ रहते थे। और उनका अब्दुल खान मान फ्राइडे अब्दुल मेरा काबिल का अब्दुल मेरा ये का अब्दुल, एक बार स्टेज पे गए मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि अपने तीन चार गाने गा के ये लोग तो सामने से सुनते बैठे, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बार।
0: किशोर दा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: नहीं गाया?
0: अगर किशोर दा

0: वो मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई। इसकी वजह यह है कि लोगों की टिप्पणी मतलब ये अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी।
1: अच्छा,
0: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें। तो ये जिनको मालूम नहीं है कि इतने किसने कष्ट है या इतनी कितनी कठिनाइयाँ हैं, तो लोग क्या, हाँ वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
1: अच्छा,
0: हाँ मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं पिछले 4 साल से लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोर बन के, इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठने का। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दर्द आए थे, तो वो शुरू किए। बाद में किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
1: अच्छा।
0: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गाते भेजती हूँ रोज सुबह। मेरा ये काम होता
1: है, क्या बात है।
0: कुछ लिखा, और कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
1: सोशल मीडिया,
0: तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
1: हूँ।
0: तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो वो तुम्हारा करके गाती हो। वो प्रमिला दावर का गाना लगता है, क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं गाती, आशा बाई जो रेंज में, मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी, पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले गाने, अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक जाती है। तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी को, जो जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का, तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, फिर मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब अब मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से दे देता। कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके साथ गाए, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है।
1: तो इसमें आपने किसी नए

0: अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है।
1: नकल नहीं की,
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गिटार दत्त के गाने बहुत मुझे,
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना है।
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही,
1: क्योंकि बोलने उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मूर्ति या उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से, नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था। क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट के, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं, ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी
1: रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है,
1: ऐसा लगता है तुम भी अनुभव से ये कह रही
0: हो। अनुभव,
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियों के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से, तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। मैं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा वस्ते नहीं होती, बहुत सारे निकलते बगीचे बनेंगे।
0: तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल
1: बहुत
0: सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट में
0: जी,
1: लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले सरिया तो कोई अपने हिसाब से लेता है,

0: सही तुमने अनुभव से ये कह रही है
1: अनुभव
0: क्योंकि आजकल वो जो कैरियों के जो प्रकार आया है ना
1: जी जी
0: आई हेट दैट मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं भी गाता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ सीखो अच्छी तरह से तालीम पाओ और इतना आसान नहीं है मैं तो एक ही लता मंगेशकर एक ही आशा वस्ते नहीं होती बहुत सारे निकलते बगीचा बनेंगे
1: तालीम बहुत जरूरी है क्लासिकल
0: बहुत
1: सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है
0: बहुत पहले 3-4-5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट में
1: जी जी
0: लेकिन आवाज की तैयारी जो हरकतें मुरकतें फिर अपने गले सरियत तो कोई अपने हिसाब से लेता है मैं अलग गाती हूँ वो बहुत अलग है कोई ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है जो वैरायटी वो करती हूँ बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए
1: जो ओरिजिनल है पहले
0: वो तो गाओ नकल में नहीं आती उसमें लेकिन उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है और वो हिसाब से बहुत जरूरी है आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता ऐसा मुझे लगता है पता नहीं ऐसा ये जो बड़ो बड़े जो मैंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में वो क्यों करते थे इतना ऐसे ही गाते थे
1: मन्नदा की बात करते हैं आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया संगीतकार थे श्री रामचंद्र तो मन्ना दा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगे आपने उनके साथ शो भी किया
0: एक शो किया बड़ौदा में
1: अच्छा
0: मन्ना दा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछी था मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है तो फ्लैट लगेगा और भाव नहीं आएंगे उसमें तो मेरी आवाज में नहीं था किसी की आवाज में जाता होता है किसी की आवाज में तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपनी आवाज में तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें असर ऐसे आघात करते जाओ और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके
1: क्या बात
0: बहुत ही अच्छा फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में बहुत ही उनका मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू तो ये नॉन मराठी लोग जो उनसे चर्च जो मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में बाम्बू चा वना च बहुत बाम्बू चा वना झऱ्याच्या काठी येशील सजणे सजणे माझ्याच पाठी तीन बार हुआ चार बार हुआ इतने ये अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं लाइन में
1: क्यों नहीं गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी जी
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द जिसे मॉड्यूलेशन उसके कम करना उससे ज्यादा फोर्स में गाना

अमिताभ सिंगर में भी लक्ष्मी साहब थे, इनसे क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत

0: का दिल बनके कभी तू सीने से लग जाएगा और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता वो देखो दिखावट ही गाने लिखे जाते थे गाए जाते संगीतकार
1: जी जी प्रमिला जी इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है हम रफी साहब को अभी याद करते हैं रफी साहब के साथ
0: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है सॉफ्ट कॉर्नर है उनके उनके साथ बहुत सारे टूर किए साउथ अफ्रीका फिजी मिडिल ईस्ट फिर जाम्बिया मलावी बहुत टूर किए रफी साहब के साथ और जो उनसे सीखा है ना मतलब सिर्फ गाना नहीं स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव और उनको किसी ने सवाल पूछा है पत्रकार परिषद की कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं उसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ मतलब मेरा गाना उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ तो मैं और क्या करूँ और किसमें हाथ क्यों डालू
1: नम्रता की हद है
0: हद है हद है और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी लेकिन जो तारीफ करनी होती है तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग सुनते थे वो मैंने वो कव्वाली गाई निगाहें मिलाने को जी चाहता है तो उसमें एक तो बड़ी लंबी थोड़ी उसमें सरगम भी थी उसमें काम भी थे तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत साउथ अफ्रीका की याद है
1: जी जी
0: बहुत पसंद आया लोगों को वो गाना ही ऐसा है तो रफी साहब सब तो बैठे थे हम प्रोग्राम खत्म हुआ प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
1: जी क्या बात वाह वाह
0: बहुत अच्छा
1: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
0: जी
1: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद
0: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी सबसे सब देखिए ये जो गाना है उनका तुम जो

0: पैसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
1: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब ही उनके मिलने के बाद जहाँ ही मिल गया,
0: क्या बात है,
1: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग
0: था।
1: बहुत एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरी हुए, उनके 5 मेजर सर्जरी, उसमें 2 हार्ट से बाईपास, 2 एक एनुरिज्म करके हैं और 2 किडनी स्टोन। उस वक्त रेजर वेजर गुजराया था, सिर्फ हारो जाओ किडनी का और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था, घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया, प्री प्लान तो हमारा टूर था। बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका, और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कैंसिल नहीं करोगे, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते, वही नहीं मेरे पास है, देखेगी तुम बिंदास जाओ। उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे, तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है वो मेरे का दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
0: कितनी भाग्यशाली आप हैं।
1: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ। बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए, तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चार कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी शक्ति बदौलत ये सब हुआ।
0: परिवार की बात चली है
1: जी,
0: तो आपकी अगली पीढ़ी में
1: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी शो में शुरू से, मतलब उन्होंने तब कुछ मेरे भेजा ही वक्त हुआ मैं कॉन्ट्रोवर्स कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था, वो छोटी थी दोनों, तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी। मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए,
0: बचपन से ही उन्होंने आपको
1: उन्होंने गाते देखा तो उन्होंने वो भी गाती और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि क्यों आएगा ऐसे ऐसे। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला और किसी आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज
0: पर,
1: बड़ी बेटी एकदम ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं, ये
0: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
1: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
0: अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चाहिए तो कौन सा गीत होगा? आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया,
1: हम लोग डुएट भी गाते थे, वो मन क्यों बहका रे बहका वो है, कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलब चपलब उस पे डाल दिया, ऐसे सब डुएट गाने हम लोग ने, तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का पंख होती तो उड़ाती रे, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद
0: आया, यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं।
1: अरे बापरे,
0: रामलाल जी का कंपोजिशन है,

पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग

0: आत्मा जो हुआ मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस।
1: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
3: आज के फनकार।
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
3: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधता।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
4: सुनिए,
3: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
5: पिटारा के तहत अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, ठीक 5 बजे आप सुनेंगे राज्य से प्रसारित समाचार मुख्यांश। कृपया प्रतीक्षा करें।

पहुंची केंद्र है। इस समय हमारे नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में

0: के विकास को नया आयाम मिलेगा। नगर विकास मंत्री सुदीप्त कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन में आज वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय के समक्ष कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसे अदालत ने लेने से इनकार कर दिया। कमेटी ने सरकार और जेएसएससी को अंतिम मौका देते हुए आगामी 16 मई से पहले मांगे गए दस्तावेज शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया। उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध नकली विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940 पेटी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग के अवर सहायक निरीक्षक दिलीप कुमार साहू ने बताया कि छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक चार पहिया वाहन और एक मालवाहक वाहन समेत तीन वाहन जब्त किए गए हैं। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र में आज एक वाहन के पलटने से उस पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों घायलों को भवनाथपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे रांची से प्रसारित समाचार मुख्यांश FM 100.8 MHz पर। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत।

सुबह की आई हवा लिए आई है सौंधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आज तो कभी गूंज

ने भी हथेलियों पर सजा ली है सारी रातें, पर इस खजाने में बची है चंद रात और मुझसे भर सपना। तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ उन्हें बनाकर दिल से अपना।

कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपने जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को? होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज डांटते हैं।

हमेशा था न खबर, क्या कभी परदेसी बसे हैं इस दिल के नगर। परदेसी का ना कोई ठौर ना ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के इस खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब चुकाना। भीग की पलकें, भीग के जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे उसके भी हालात।

उसने दिया दुख लेते हैं उसका नाम ही। भीगे आंचल बिखरा काजल सूखे होंठ, सामने तू है सब कुछ अब किससे कैसी ओट। छुप पाया है क्या चांद चांदनी से कभी, हमारे होठों पर भी तो सजे हैं अब तक गीत वही। वो हो दूर से क्या, मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम। सुबह शाम

Yeah, and here's the thing.

साथ मैं हूँ हाजिर नेहा आगरकर के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं विशाल मिश्रा और असीम स्कोर डिजाइन इस गीत के साथ। फिल्म का नाम नोटबुक। अक्षय त्रिपाठी ने इस गीत को रचा है और विशाल मिश्रा का संगीत।

करोड़ का रेता माफी कहता कि मेरे सामने उसको मार खूब मार।

कार्यक्रम कराने में पूरा है। एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं, ठीक 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। क्या प्रतीक्षा करें।

नई समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को

0: आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी कासीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और कासीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंडा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी न्यूज समाचार FM 100.8 MHz पर। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं प्रोग्राम महफिल। महफिल के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद कव्वाली। आज के कव्वाली हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद वकील और जावेद हुसैन। मौसिकी है मदन मोहंती और शायर हैं जावेद अख्तर। आइए सुनें।

0: कवाली के साथ ही प्रोग्राम महफिल अब यहीं खत्म होता है। एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम शीर्षज्ञ। इससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरे मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग

0: एक शून्य शून्य शून्य एक।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत। कार्यक्रम शीर्षक गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के शीर्षक गीत कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ उमा पांडे।

तो शिशगी सरगम में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों की। मौसम के बदलते ही ये अपना ठिकाना, अपना देश और अपना पता बिना किसी रोक टोक के बदल लेते हैं। इनके लिए सरहदी और सरहदों पर ना कोई पहरा, ना कोई सीमा शुल्क, बेरोक टोक उन्मुक्त बस ये उड़ते रहते हैं, निरंतर प्रकृति से मेल मिलाते जीवित

जाता नहीं, फिर भी सबक याद रहता है। हर एक परिंदे को अपना पेड़ याद रहता है। मैं पंछी आजाद, मेरा कहीं दूर ठिकाना रे, ये दुनिया एक बाग है, यहाँ बस मेरा आना और जाना रे। जीवन के प्रभात में आए, सांझ ढलते ही मैं उड़ जाऊं, बंधन ने जो मुझको बांधे वो बड़ा दीवाना रे।

0: छोटे पर हैं इनके, लेकिन मीलों तक आकाश में उड़ जाते हैं। भोर के कलर से शाम ढलने की चहचहाहट में अनेकों संदेश छुपे रहते हैं। प्रकृति के ये हुनरमंद इंजीनियर वेब डिजाइनर है जो अपने आशियाने में एक एक तिनके से बुनकर उसे पुख्ता बना डालते हैं। दोस्तों, आज हम बातें कर रहे थे पंछियों के बारे में और इसके साथ ही कार्यक्रम शीर्षक गीत अपने ही संपन्न करने की उमा पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत एफएम 100.1 MHz पर। ये आकाशवाणी जोशीपुर का प्रतिभागी केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम रंग संगीत। इससे पहले आइए सुनते हैं इन संदेशों को।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद।

0: आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
1: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: समर आ गया है और जब जयपुर में शुरू हो रहा है कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल जेआरई टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेकर आया है समर कैंप, जहां बच्चे ही नहीं मम्मी पापा भी रहेंगे फिट।
3: अब इंतजार नहीं, पूरा एक्टिव टाइम सेल्फ डिफेंस क्लासेस एंड वेट लॉस प्रोग्राम और पहली बार यंगस्टर्स का नया क्रेज पिकल बॉल भी शामिल। जुम्बा योगा सभी के लिए, रोल बॉल 4 से 19 साल, क्रिकेट 4 से 19 साल, बाकी स्पोर्ट्स 6 से 19 साल के लिए।
2: तो देर किस बात की, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 मई 2026, अभी विजिट करें jrdsportscomplex.in/psl-camp एरिया जमशेदपुर।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: आकाशवाणी at 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इश्क की थी जयदेव के संगीत निर्देशन में, गीत की रचना की थी जानिसा अख्तर ने।

0: लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद फिर मिलेंगे अगले गीतों के साथ।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: ब्रेक के बाद आइए सुनते हैं संगीत का अगला गीत।

तुम्हार और आशा भोसले को आपने सुना फिल्म दीवार में। संगीत आर डी बर्मन का था और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का प्रवीण भारती केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आज की सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 7 बजे आप सुनेंगे रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर सुन सकेंगे विशेष जयमाला, जिसके अंतर्गत आज सुनेंगे सैनिक। इसी तरह से सुनिए विशेष जयमाला के तहत आज सुनेंगे सेलिब्रिटी स्पेशल। शाम 7:45 पर कार्यक्रम इंद्रधनुष के तहत आप सुन सकेंगे जिज्ञासा। शाम 7:00 इसी फिर से सुनिए रात 8 बजे आप सुनेंगे नाटकों का कार्यक्रम हवा पहन। कार्यक्रम चित्रलोक का प्रसारण होता है रात 8:15 पर, जिसके पहले भाग में झरोखा के तहत आप सुनते हैं कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात 8:20 पर चित्रलोक के दूसरे भाग में आप सुन सकेंगे मिली जुली फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात 8:45 पर दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार यानी समाचार संध्या का प्रसारण होगा। रात 9 बजे आप सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर एक और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओं आपको याद दिला दें हमारी ये सभा चलती है रात 11 बजे तक। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं ठीक 7 बजे आप सुनेंगे रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पहले मुख्य समाचार। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा, करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा धनबाद में गैंगवार जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के तीन थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग

0: अधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों सुलहनीय मामलों का विशेष बेंचों का गठन कर निष्पादन किया गया और करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली हुई। रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले ताकि न्यायालय पर लोगों का भरोसा बना रहे।
1: इन्वेस्टिगेशन तो बहुत मैटर करता है ना किसी भी क्रिमिनल केस में। इन्वेस्टिगेशन सही होगा तो फिर जो कोर्ट में कन्विक्शन रेट अगर बढ़ेगा तो लोगों में डर का माहौल होगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं होता है, एक्विटल होता है, तो जो सही ने जो क्राइम किया उसका उत्साह बढ़ेगा, चलो करने का कुछ नहीं होता है, फिर करो रिपीट करो, तो जो बेटर है वो खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यकाल कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
2: बैठक हुई जिसमें शहर के कचरा प्रबंधन से लेके परिवहन व्यवस्था से लेकर एकलाप को और बेहतर करने की दिशा में तमाम नागरिकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और मुझको लगता है कि इस बैठक का आउटकम गिरडीह शहर को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में बिना अनुमति प्राप्त और आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी कॉलेज को लेकर आरोप अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को सभी फार्मेसी कॉलेजों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर अंसारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच के लिए विशेष टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है ताकि सभी तथ्यों की गंभीरता से पड़ताल की जा सके। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान लापरवाही, नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी संगठन में नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के स्तर पर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, उसे वे उजागर करने का काम कर रहे हैं। श्री किशोर ने कहा कि पार्टी को ज्वलंत मुद्दों और चुनावी वादे को लेकर मुखर होना होगा।
3: नाराजगी का कोई मामला नहीं, पार्टी के असर पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा, लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर अगर पार्टी चुप बैठे है तो फिर किस बात की पार्टी। जो आपने वादे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि साथ वादे साथ ही रहते, किसी एक पर भी आप मुखर नहीं हो पाए।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल वीडियो को लेकर राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि गैंग वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है और आम लोगों में भय का माहौल है। श्री मरांडी ने कहा कि संवेदनशील जिलों में कथित रूप से करोड़ों रुपए लेकर पोस्टिंग किए जाने की चर्चा ने कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति जारी रही तो राज्य में कानून व्यवस्था और बदतर हो सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ACB ने अग्रिम जमानत

0: सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र से ईसरी बाजार में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि कल हुई इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग। आदिवासियों की जमीन लूट समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में दुर्ग मंत्री गीताश्री उराव ने कहा कि आदिवासियों को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से विभिन्न संस्थाओं में आदिवासी धर्म कॉलम लागू करने की मांग की।
1: आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं है? और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है।
0: उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध नकली विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940 पेटी शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग के अवर सहायक निरीक्षक दीप कुमार साहू ने बताया कि नगड़ी रातू और धुरवा थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
2: छापेमारी में 940 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया। अभी जाँच किया जा रहा है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, जांच किया जा रहा है, जांच के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
0: जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और 19,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं।
3: एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जामताड़ा जिला के कर्माटांड थाना क्षेत्र में ग्राम सहजपुर में कुछ साइबर अपराधियों के द्वारा इस सूचना पर रेड करने के दौरान घटनास्थल से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से जो बरामद हुआ है 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और लगभग 19,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। इन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभियुक्त में।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक। साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर दिए कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, धनबाद में डेंगू जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार। प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश। एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब जब्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आप सुन रहे थे रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार FM 100.8 गीगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला। इससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
5: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, स्पोन्स एवं हवन सामग्री।

इस मधुर गीत के बाद एक और बहुत सुंदर गीत फौजी भाइयों आपकी सेवा में। एक फिल्म आई थी कागज के नाम, शायद आपकी याद में हो, बहुत सुंदर गीत मैंने उसमें गाया सपन जगमोहन जी के संगीत में, और इस गीत ने मेरा साथ दिया आशा भोसले जी ने। फौजी भाइयों, मुझे पसंद बहुत है ये गीत और आशा करता हूँ कि आप भी इसे जरूर पसंद करेंगे। हर जन्म में हमारा मिलन दो दिलों का उजाला है। इस गाने के बारे में मैं आपको खास बात ये बताना चाहूँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार था और सपन जगमोहन जी के वहाँ से फोन आया इस गाने के लिए। जब मैं स्टूडियो में पहुँचा तो वहाँ पे पता लगा ये गाना मेरे साथ आशा जी गा रही हैं, और पता लगा कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। फौजी भाइयों, देखिए ये तकदीर होती है, अगर मैं मना कर देता या आशा जी मना कर देती तो शायद ये गाना नहीं होता, मगर ईश्वर की कृपा से ये गाना हुआ।

के साथ करीबी रिश्ता था। उन्होंने एक फिल्म में म्यूजिक दिया जिसका नाम था जवान। जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिरोज खान साहब की ये फिल्म, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस गीत को हमने लंदन में रिकॉर्ड किया, एबी रोड स्टूडियो में, जहाँ पे पहले बीटल्स रिकॉर्डिंग किया करते थे। और इस गाने को लिखा जाने माने शायर

आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाया जाएगा इस अंतराल।

0: से सुनवा रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के जाने पार चुका है मनहर उधार द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का शेष भाग।
1: फौजी भाइयों, हम सब त्योहारों को मनाते हैं, आप भी मनाते होंगे अपने तरीके से, मगर आप अपने परिवार से दूर हैं, आप हमारे इस शहरी जीवन से दूर हैं, तो ऐसा लगता है कि हर त्योहारों को आप अपने हिसाब से मनाते होंगे। ये गीत मैंने गाया था अपने राजपूत के लिए।

मेरा सौभाग्य है कि 1971 में इंडो पाक वॉर के बाद हमारे बहुत ही जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील दत्त साहब ने एक ग्रुप बनाया था अजंता आर्ट्स, और सुनील दत्त साहब के साथ नरगिस जी और संजय तो उस वक्त बहुत छोटे थे, वो पूरा ग्रुप बना के साथ में म्यूजिशियंस के साथ। सुनील दत्त साहब का ये मकसद था कि हमारे जवान हमारे फौजी भाई दूर दराज एरिया में अपना काम कर रहे हैं, रात दिन

हम जाके इस मेहनत में उनको हमें जाके एंटरटेन करना चाहिए। इसलिए हम वो पूरा ग्रुप बना के 10 साल के साथ जितने एरियाज थे हमारे वहाँ पे हम गए, बॉर्डर एरियाज में, छाम सेक्टर में, पुंछ सेक्टर में, जम्मू में गए। और इतना ही नहीं, हमारे ट्रूप्स ढाका में थे, बांग्लादेश में थे, तो हम दत्त साहब के साथ वहाँ भी गए, हमारे पूरे फौजी भाइयों का मनोरंजन किया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स में वहाँ भी हमारे फौजी भाइयों का मनोरंजन किया। ये हमारी खुशकिस्मती है, और ये खुशकिस्मती इसलिए है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर जो कर रहे हैं वो कमाल ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये देशभक्ति का गीत सुनाना चाहूँगा जो मैंने गाया था फिल्म कर्मा के लिए, सुभाष घई साहब की ये फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, ये गीत मैंने गाया था आनंद बख्शी जी का, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और ये सही माने में आप लोग बोलते हैं हर कर्म।

0: हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मनहर पोद्दार द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाया जाएगा इस अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के आयोजक है देवदर्शन धूप।

सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन।

0: श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

10 भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे छोटे भाई हैं पंकज उदास। एक गाना उन्होंने गाया, ऐसा दिल से गाया कि आदमी जब सुनता है तो रो पड़ता है, और खास तौर से जब अपने देश से दूर, अपने गांव से, अपने वतन से दूर होता है, तब उसको लगता है कि मैं कब पहुंच जाऊं, कब अपने घर जाके अपने परिवार वालों से मिलूं। ये गाना सुनने के बाद हर इंसान सोचता है कि मैं जल्दी से अपने घर जाऊं और अपने परिवार वालों से मिलूं। जब हम भी ये गाना सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। मुझे आशा है आपको ये गाना जरूर पसंद आएगा, अपने परिवार की याद दिलाएगा। मेरे छोटे भाई पंकज जो मुझे जान से प्यारे हैं, उनका गाया हुआ ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत फिल्म नाम के लिए, जिसमें उन्होंने खुद फिल्म में एक्टिंग भी की थी। गीत है

विश्वासी भाइयों को खुश करें क्योंकि आप हमारे रक्षक करते हैं। मगर ये शायद दूर की बात है, इस वक्त तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मजा हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मगर जाते जाते आपको फिर सलाम करता हूँ और आपको ये फिर से कहता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं उसका हमें अंदाजा है। हम महसूस करते हैं जो काम आप कर रहे हैं, हम हमेशा आपके ऋणी हैं। इसलिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं जैसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो। जैसे मेरा ये गीत फिल्म कुर्बानी से आप सब पे कुर्बान है।

जाते जाते मनहर उदास का सलाम, सिर्फ सलाम नहीं, जय हिंद। हो जी साथियों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: रोजाना छाया गीत के प्रायोजक है वीको वज्रदंती भारत का गम
3: भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ गा भी रही हूँ मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने शुक्र है गिरी नहीं।
4: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ

ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी माइग्रेंट बर्ड डे मनाया जाता है और इस बार की थीम यह है कि हर पक्षी मायने रखता है और आपके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन भी मायने रखते हैं। अब सवाल यह है कि

पक्षी न तो गर्मियों में आते हैं और न ही सर्दियों में, बल्कि मध्य और पूर्वी एशिया में अपने प्रजनन स्थलों से अफ्रीका के शीतकालीन स्थलों की ओर प्रवास करते समय ये पतझड़ और वसंत के मौसम में भारत से होकर गुजरते हैं। गुजरात और राजस्थान पैसेज माइग्रेशन के बहुत बड़े केंद्र हैं। यहाँ अगस्त से अक्टूबर के बीच हजारों की तादाद में पक्षी गुजरते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बारिश के बाद हरे भरे और कीड़े मकोड़ों से भरे इस इलाके में उपलब्ध भोजन का लाभ उठा सके। भारत में पैसेज माइग्रेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है गुजरात का कच्छ का इलाका। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अफ्रीकी महाद्वीप के करीब है और यहाँ अलग अलग तरह के प्राकृतिक आवास मौजूद है। कच्छ से 8 से भी ज्यादा प्रजातियों के पैसेज माइग्रेंट्स गुजरते हैं, जिनमें यूरोपियन रूलर, रेड बैग्ड और रेड टेल्ड श्राइक, स्पॉटेड फ्लाई कैचर, रूफ टेल्ड स्क्रब रॉबिन, ग्रेटर व्हाइट थ्रोन, कॉमन कुकू और ब्लू चीक्ड बी ईटर शामिल है। इनमें से रोलर कुकू और बी ईटर की कुछ आबादी भारत के भीतर ही प्रजनन भी करती है। भारत में बहुत सारे पक्षी उत्तरी एशिया, यूरोप, साइबेरिया और टुंड्रा के क्षेत्र में बर्फीली सर्दियों के शुरू होते ही निकल पड़ते हैं। वहाँ से लंबी यात्रा करके ये बर्ड्स भारत आते हैं और कुछ महीनों तक यहाँ रहते हैं। गर्मी के मौसम के पहले यहाँ से वापस चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ किदार, गुलाबी पेलिकन और गैडवाल प्रमुख है। पृथ्वी के ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के इलाकों के बीच मौसम और जलवायु में बहुत ही ज्यादा फर्क देखा जा सकता है, लेकिन इस फर्क की वजह से उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले बहुत सारे पक्षी सर्दी का मौसम आते ही सर्दी से बचने के लिए अपने इलाके छोड़ देते हैं और वो गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ उन्हें उनके हिसाब से कम ठंड का सामना करना पड़ता है, इसलिए जीवन आसान रहता है। भारत के मैदानी इलाकों में झीलों के आसपास सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी आते हैं। वैसे आपको बताएं कि मुंबई जहाँ से हम बोल रहे हैं यहाँ पर भी फ्लेमिंगो आया करते हैं और बड़ी तादाद में आया करते हैं। मुंबई में शिवड़ी नाम का इलाका है जहाँ बड़ी तादाद में फ्लेमिंगो आते हैं। इसके अलावा कोंकण के समुद्र तटों पर भी बहुत सारे पक्षी आया करते हैं। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं साइबेरियन क्रेन या सारस। सारस परिवार की एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जो साल का ज्यादातर समय वेस्टर्न साइबेरिया में गुजारती है। ये पक्षी सर्दी के मौसम में साइबेरिया की कड़ाकेदार ठंड से बचने के लिए 4,000 मील यानी अगर इसमें 1.5 आप गुणा कर दें तो आपको पता चलेगा कि कितने किलोमीटर होते हैं, इतने किलोमीटर दूर आते हैं और भारत में ये मुख्य रूप से भरतपुर नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं। भारत में ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ी तादाद में झुंड के रूप में आते हैं। मुख्य रूप से ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में आते हैं जो इनका सबसे बड़ा प्रवास होता है। ये केवल अक्टूबर के महीने में आते हैं। रफ पक्षी आर्कटिक के टुंड्रा इलाके के पक्षी हैं। ये भी बर्फीली सर्दियों में भारत का रुख करते हैं जहाँ इस मौसम में इन्हें भरपूर खाना मिलता है, लेकिन गर्मियों में इनकी ब्रीडिंग का मौसम शुरू होने पर ये अपने इलाके में वापस लौट जाते हैं। किदारी यानी उत्तरी शोवेलर को खोखार, गिराह या पुलिंग भी कहते हैं। ये सतही बतख है जो यूरोप और उत्तरी एशिया में रहती है, लेकिन सर्दियों में दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में ये चली आती है। और हैरत की बात यह है कि अपनी इस यात्रा में ये हिमालय पर भी कुछ समय के लिए ठहरती है। पेलिकन अपनी विशाल चोंच के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इनमें गुलाबी पेलिकन या रोजी पेलिकन के पंखों का फैलाव लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तकरीबन 12 फुट का फैलाव होता है इनके पंखों का। ये उत्तर भारत में ऐसे तालाबों और झीलों में आना पसंद करते हैं जहाँ मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। गैडवाल छोटे भूरे रंग की बतख होती है जो सर्दियों में भारत में बड़ी तादाद में आती है, यूरोप से आती है और साफ पानी वाले तालाबों और झीलों में रहना पसंद करती है। तो वही हमने आपको बताया कि 9 मई को माइग्रेंट बर्ड्स डे मनाया जाएगा और भारत में कौन कौन से प्रवासी पक्षी किन इलाकों में किस मौसम में आते हैं, क्या कभी आपने इन पक्षियों को देखने की और अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है?

एक और महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया भर में माओ के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को फोकस में रखने वाला ये दिन है मदर्स डे। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और इस बरस 10 मई को ये दिन मनाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, 20वीं सदी की बात है। फिलाडेल्फिया में एना जार्विस रहती थी, जिन्होंने अपनी माँ को याद किया और इस तरह से मदर्स डे की नींव पड़ी। एना जार्विस की माँ सारी जिंदगी महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा के लिए कोशिशें करती रही थी। 1905 में उनकी मौत हुई और बाद में एना ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। 12 मई 1907 को एना जार्विस ने वेस्ट वर्जीनिया के ग्रेटन में चर्च में अपनी माँ की याद में एक सभा आयोजित की। 5 साल के भीतर अमेरिका के लगभग हर राज्य में ये दिन मनाया जाने लगा। फिर 1914 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने इसे नेशनल हॉलीडे

इंडिया में रेड क्रॉस डे मनाया गया और आज हम आपको बता रहे हैं कि ये दिन कैसे शुरू हुआ। असल में ये आयोजन रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के संस्थापक जीन हेनरी डोनेंट की जयंती के दिन मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के दिन विश्व रेड क्रॉस डे मनाने का विचार सबसे पहले 1935 में टोक्यो जापान में आयोजित एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सम्मेलन में आया था और इसकी वजह यह थी कि हेनरी ड्यूनेंट की स्मृति को सलाम किया जाए और मानवता की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। हेनरी ड्यूनेंट ने 1859 में सोलफेरिनों की लड़ाई में घायल सैनिकों की मदद की थी। ड्यूनेंट ने इस बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम था अ मेमोरी ऑफ सोलफेरिनो और युद्ध के समय घायलों की सहायता के लिए उन्होंने वॉलंटियर ग्रुप बनाया था। मानवता को जिंदा रखने के लिए उन्होंने लगातार कोशिशें की थी। इत्तेफाक की बात है कि 2026 की विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम भी यही रही, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। आप दिन में आजकल एक वाक्य बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। इस बार सचमुच बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने तो ये अनुमान भी दिया है कि मई के महीने में हीट वेव बहुत दिनों तक कायम रह सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2026 में सुपर नीनो डेवलप हो सकता है। ये मौसम का एक ऐसा पैटर्न है जिसने 1877-78 में भयानक तबाही मचाई थी। अब जिस तरह से पूरी दुनिया में समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन बढ़ रही है, उसके हिसाब से दोबारा सुपर एलनीनो के आने का खतरा बढ़ गया है। वैसे एलनीनो के बारे में आपको बता दें कि ये जलवायु से जुड़ी एक घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। इससे पूरी दुनिया में मौसम का पैटर्न बदल जाता है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, मानसून कमजोर हो जाता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है जो एल नीनो के बनने का संकेत भी है और इस वजह से गर्मी ज्यादा पड़ सकती है। गर्मी का मौसम आम लेकर आता है, आइसक्रीम और कुल्फी, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, छतों पर सोना, इन तमाम खुशगवार चीजों के बीच आजकल जो चीज सभी को परेशान कर रही है वो है हीट वेव। हीट वेव के वजह से गर्मियों का जो मजा है वो एक तरह से खराब ही हो रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को खबरदार रहने के लिए चेतावनी भी जारी की है। वही जिज्ञासा कार्यक्रम में तो हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं ना। आप सभी के जहन में ये सवाल

हो और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 30 डिग्री या उससे ज्यादा हो। अब हीट वेव आपके लिए क्यों खतरनाक है ये हम आपको बता रहे हैं। हीट वेव या लू के चलते चक्कर आ सकता है, सिर दर्द और बेहोशी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। इससे पानी की जोरदार कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर में बहुत भारी गिरावट भी आ सकती है। लंबे समय तक अगर शरीर का तापमान बहुत ज्यादा रहे तो दिल, फेफड़े, गुर्दे, लीवर और दिमाग जैसे अंगों पर भी खतरा बना रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा एबनॉर्मल गर्मी में निकलते हैं तो मस्तिष्क में सूजन भी आ सकती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अब इसके लक्षण हम आपको बता दें। जब कोई व्यक्ति हीट वेव के संपर्क में आता है तो उसका इंटरनल सिस्टम ऊंचे तापमान के अनुकूल नहीं बन पाता। लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने के बाद सबसे पहले तो पसीना आने की जो काबिलियत है उस पर असर पड़ता है। पसीना हमारे शरीर को ठंडा करने की एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब किसी व्यक्ति को पसीना आना बंद हो जाता है तो उसे गर्मी से थकावट होने का खतरा ज्यादा होता है और हीट स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर के अंदर रहना चाहिए, ठंडा लेकिन जरूरत से थोड़ा ज्यादा लिक्विड लेना चाहिए। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि लू से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को कड़ी दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना चाहिए यानी खूब पानी पीना है, बहुत सारे तरल पदार्थ अपने खाने पीने में शामिल करना है। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, 30 मिनट का अलार्म सेट कीजिए। हर 30 मिनट में आपको थोड़ा ना थोड़ा पानी जरूरी तौर पर पीना है। कैफीन या अल्कोहल या चीनी वाले लिक्विड से बचें, बर्फीली चीजों से बचें क्योंकि ये पेट में ऐंठन पैदा कर सकती हैं। जहाँ तक संभव हो घर के अंदर रहें, सुबह और शाम के वक्त ही आपको बाहर निकलना है। सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, छाता लेकर चल सकते हैं, साथ में पानी लेकर चल सकते हैं। हीट वेव से बचिए, गर्मी का सामना कीजिए। अब देखिए मौसम का जो असंतुलन है उसका जो असर है वो तो पूरी दुनिया में दिखाई दे ही रहा है। जिज्ञासा कार्यक्रम में अब हम तलत महमूद को नमन कर रहे हैं। मखमली आवाज के धनी जाने माने गायक तलत महमूद ने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाने का सफर शुरू किया था। 16 बरस की उम्र में उनका पहला गाना आकाशवाणी के लिए रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद एक प्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया और उनके रिकॉर्ड निकाले गए। फिर 1944 में तलत महमूद गायक और अभिनेता बनने की चाहत लिए कोलकाता चले गए। तपन कुमार के नाम से कई बंगाली और हिंदी गाने गाए और उसके बाद वो मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन वो एक बड़े पार्श्व गायक के रूप में बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। तलत महमूद के चाहने वाले पूरी दुनिया

इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी और हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ। आज आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

सत्य आपने सुना। मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपनी अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहाँ पुरुष सत्ता है, स्त्री को दासी या फिर विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है, जहाँ स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं होता। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ गई। पूरी कहानी मृणाल की जबानी है, सुनिए आगे। जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई है ना? देखा तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पर आए घर में आए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है? हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी, पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सब कुछ दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में उनके अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती नहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थी। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और के खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जी जी कहने लगी, मजली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थी मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती थी कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थी वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की चिंता होती, और यही कारण है कि माता पिता के ना होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता, और ऐसे लोग

प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया, शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों ना हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया, दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता, बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में निभा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो गए, कहने लगे अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता था, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जी जी तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाव का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाव के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आए हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरे घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दूसरा वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध

लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा न आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने सवा रुपए जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली।

कार्यक्रम में इंदिरो आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। आपको सुना रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ। आज आपको सुना इस कहानी का दूसरा भाग, वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।

जलवायु साक्षरता निष्कर्ष यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कंपनी में नहीं बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने दस संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, शिक्षा और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए

के साथ नेहा अगरकर देसाई स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती से और लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं बजरंगी भाईजान फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज है और इस गीत को लिखा है अमित भट्टाचार्य ने संगीत प्रीतम का।

इतवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए बागी फिल्म का गीत मोनाली ठाकुर और मीत ब्रोज की आवाजों में। कुमार की रचना और धुन बनाई है मीत ब्रोज ने।

0: दिवस के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.nctcr.gov.in पर लॉगिन करें।

सुनाए कार्यक्रम से पहले लीजिए इस अंतराल के बाद सुनिए अजहर फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ें। मनोज यादव ने इस गीत को रचा।

0: 10 साल जयपुर में बीते किया। एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उसी का जवाब नहीं, जिसने मुझे उतने चरण से इन चीजों को हमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ
0: मैंने पढ़ा जारी कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जब दीदी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,

सुनाते हैं देव मेथी और परोमा दास गुप्ता की आवाज।

0: सेवा रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, बीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह,

0: संघ के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेट्टी कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अरब अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित।

0: 19वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुटे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंडा में रथ जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहाँ प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ATEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। ATEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि

0: टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांध्र कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में डीडीके प्रमुख विजय ने कांग्रेस, बीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरबी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और उसके सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।

सुब्रमण्यम और जोनिटा गांधी की आवाज में सुनिए चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल विशाल शेखर का संगीत।

कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को

से संगीतबद्ध किया है। विशाल और शेखर ने बैनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें

सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में शानदार फिल्म का ये गीत अमित त्रिवेदी की आवाज अमिताभ

की अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धनबनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है।

0: पुतिन का रहते तो ऊंची सी दीवार थी,
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
0: और बीच में एक गैप था लिटरली। जो आप कह रही आप जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए, गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं, जंप कर जाते। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, मैं भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानी आपको मिलेगी सिर्फ विविध भारती पर।

ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोर नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की सा

महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चली गई कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के

ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहाँ तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रही। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहाँ आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल विश्वास से मुलाकात की। अनिल विश्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल विश्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल विश्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना।

बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए ललित महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया। फिल्म छाया के लिए आज भी फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सियासत में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजात में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का

एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये

दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए

आली खोसवार, यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।

City. विविध भारती आपका जीवन संगीत।

की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार।

से होते आए हैं हुस्न इश्क के चर्चे, हुस्न की वादियों में पलता है इश्क। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं है।

0: मुख्तसर सी मुलाकात, कुछ नाजुक से जज्बात छलके थे उनकी आंखों में। आते आते कुछ ठहर सा गया था उनके लबों पर। एक झलक देख लिया था कभी आपको, वो कसक दिल से आज तक न गई। काश काश वो एक और मुलाकात का वादा तो करते। देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से। अब तो सूरत दिखा, हिजाब न कर।
1: रुख

मुहब्बतों में नुमाइश की जरूरत ही कहाँ। ये तो वो जज्बा है जिसमें खामोशी भी गुनगुनाती है। लहराते आंचल की बात न पूछिए, रह गई जो दिल में वो बात न पूछिए। इकरार मोहब्बत की अदा तो देखिए हुजूर, जुल्फी जब वो मेरे चेहरे पर बिखरा देती है, बड़ी सादगी से फिर वो मुस्कुरा देती है।

शक्ति पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। जिंदगी इश्क मोहब्बत से जमा होती है। तल तलप सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी, जुबां है जवा मोहब्बत की। बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी।

हिसाब रह जाता है। इश्क जब बेहिसाब हो जाए, मोहब्बत की कोई हद कोई सरहद नहीं। कुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी।

दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह। उफ, ये लहराते गेसू, ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए इनके साए तले। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह। जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं।

गीतों के साथ आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को। नमस्कार।

की बात।

ही है आज की ये सभा। इसी फ्रिक्वेंसी पर कल सुबह 5:55 पर हम फिर हाजिर होंगे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ।